मेरे हानिया मेरे दोस्ता मेनू जानदे वेख लई सारी उम्र ना खड़े नाल मेरे मेरा सिवा तो सेक लई।

उम्मीद है कि दोस्तों की पसंद आया सी। हूँ प्रोग्राम टाइम नज़दीक आ रहा तो नेक्स्ट ये सुनो, ये सब दोस्तों से पसंद है सी जरूर।

0: देखिए राज़े उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर.
1: Today, tomorrow, every day, Sheffield's Link FM.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

कई बात ना रहती है, झूठ आखां कुछ बचता है, सच आखां बांबर मचता है, दोना गल्ला तोंजी जचता है, जच जच के जिभां कहंदी है, मुंह आई बात ना रहती है, मुंह आई बात ना रहती है।

हमके डरो अंधेरा है, बड़ अंदर वेखो केड़ा है, क्यों खलकत बाहर ढूंढेंदी है, मुंह आई बात ना रहंदी है।

साथी वख नहीं, बिन शोते दुझा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ताई जान जुदाइयां सहंदी है, मुंह आई बात ना रहंदी है, मुंह आई बात ना रहंदी है, मुंह आई बात ना रहंदी है।

इल्म किताबां दा तू नाम रख लिया काजी। हथ विच फड़के तलवारां तू नाम रख लिया गाजी। मक्के मदीने घूम आया तू नाम रख लिया हाजी। तू की हासिल कीता जे यार ना रखिया राजी।

से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ। वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp. 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

के अब दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: Linking communities. This is Link FM, 96.7 FM.
15: Your very own community radio station.
16: Link FM.

0: Sheffield's very own community radio station,
1: Link FM.
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM, दिल से आपके साथ लिंक FM.

0: राह की मंजिल
1: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: More beautiful songs, subscribe to my channel.

0: निकले और हर सूर दिल को छू जाए,
1: वही है लिंक एफएम।
0: दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: At the heart of the city, you're listening to Link FM.
4: Link FM.
3: The latest updates from your local community. Sheffield's very own community radio station. Sheffield's Link FM.

0: is Link Link FM.
1: अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाड़ा इफ्तखार ठाकुर पे बोलना ते तुसी सुनने हो पे लिंक एफएम 96.7। बहुत मजा है सीने।

0: Lincoln Communities, thinking positive. This is your local community radio station, Sheffield's Link FM.
1: If you would like to promote your business on our radio station, contact on 0114 261 8182 or email us on info@linkfm.org.
2: मैं फिर से जीना चाहती हूँ रजत, तुम्हारी आंखों में, बाहों में, तुम्हारे साथ। मैं इंतजार करूंगी रजत, एतबार करूंगी, हद से भी ज्यादा तुमसे प्यार करूंगी। बस मेरे प्यार की खातिर एक बार वापस आ जाओ रजत, सिर्फ एक बार।

0: हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी।
1: अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।
2: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक रशीद।
1: मैं औरंगजेब चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन कियानी है।
5: मेरा नाम अहमद अस्करा।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ।
7: मेरा नाम अंजुम अफताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
8: Across Sheffield on 96.7, around the world at linkfm.org, this is your community station, Link FM.

0: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org. Link FM.
1: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल।
1: जहाँ बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ।
2: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, उसने लिख कर भेजा है वक्त मिला तो सोचेंगे। और मौसम खुशबू बादे सबा चांद शफक और तारों में, मौसम खुशबू बादे सबा चांद शफक और तारों में, कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला सोचेंगे। और या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे।
1: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।
1: From the heart of the city, this is Link FM.

0: Linking communities, thinking positive. This is Link FM.
1: You're listening to Link FM on 96.7 FM. Linking communities, thinking positive across South Yorkshire.
2: अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी।
3: अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp. 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba, and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: वो इश्क ही क्या जो सिर्फ पास रहने से पूरा हो मोहब्बत तो वो है जो दूरियों में भी महसूस हो तू मेरी किस्मत में हो या ना हो ये नहीं जानता मैं मगर तेरा नाम लेते ही दिल को सुकून जरूर होगा

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: दिस इज लिंक एफएम।

0: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
1: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल,
2: जहाँ बातें बनते हैं, वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ।
3: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: जहां हर लफ्ज दिल से निकले और हर सूर दिल को छो जाए,
1: वही है लिंक एफएम।
0: दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।
1: From the heart of the city, this is Link FM.
2: Listen live online at linkfm.org. Link FM.

0: और कुछ मुस्कानें पूरी जिंदगी का सुकून बन जाती हैं।
1: FM Sheffield.
2: Link FM.
1: Your number one for news in Sheffield.
3: Link FM.
4: अक्कान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से। संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के। पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: शेफील्ड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
2: मैं औरंगजेब चौधरी।
3: मैं असलम भुट्टा।
4: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
5: मेरा नाम इशफाक हुसैन कियानी है।
6: मेरा नाम अहमद असगरा।
7: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ।
8: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
9: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।
10: अस्सलाम वालेकुम, मैं हनाई मजारवी और तुसा सुन रहे हो लिंक एफएम।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM.

0: Link FM, your number one community radio station.
1: जहां दिल मिलते हैं, जहां बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल,
2: जहां बातें बनते हैं, वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ।
3: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: This is Link FM.
1: अलग और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह।

0: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
1: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
6: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07809 568 233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
7: ਲੋ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਆਈ ਗਏ ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਰਾਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਏ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੇ ਤੱਕੋ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਸਾਲਗੀਰਾ ਮਾਣੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਔਰ ਦਿਗਰ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਪਰ ਬਣਵਾਈ ਸਕਣੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬੁਝੋ ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਰਾਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆਰਡਰ ਨਿੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੜਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਖਾਣੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਇਫਤਖਾਰ ਕੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਪਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07931737547
8: या 07784850934.
9: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11am till 2pm. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link work encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
10: You're listening to Sohana Safar with Ifat Hamid and Mohammed Yassin on Link FM. Every Sunday from 7pm till 9pm.
11: Samin Sohana Safar ke saath, jo ki aap Link FM Sheffield se sun rahe hain, aapki khidmat mein aap hi ke mezban Mohammed Yassin aur Ifat Hamid hazir hain. Assalamu alaikum, aadab, namaste, sat sri akaal. आप सबको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं. जो जो हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद. उम्मीद है सामीन कि आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा, और चूँकि लॉन्ग वीकेंड था, बैंक हॉलीडे था, और खूब आपने एंजॉय किया होगा. और अब बैक टू नॉर्मल हैं हम सब, बच्चे भी वापस स्कूल चले गए हैं, सब लोग अपने अपने कामों पर वापस अपनी रूटीन में ज़िंदगी जा रही है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपना ये वक्त जो है ये पूरी तरह से एंजॉय किया होगा. अल्लाह ताला आप सबको जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे, सदा खुश रहें, यही हमारी दुआ है आप सब के लिए. सामिन, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हो तो इस प्रोग्राम की औकात बनेगी.
12: आप मेरी दुआ भी हैं, आप मेरी दुआ भी हैं और कबूलियत भी हैं. मेरे दिल का यकीन भी हैं और मोहब्बत भी है।

0: दिल ने जब भी आपको पुकारा है, दिल ने जब भी आपको पुकारा है, हर लम्हा आपका सहारा है। मेरी दुनिया आपके गिर्द घूमती है, आप ही जीने का इशारा है।
1: जी हाँ, दिल ने आपको पुकारा है, तो अगर आप वाकई हमें याद कर रहे हैं सामिन, तो पहुंचिए हम तक। हमारी व्हाट्सएप नंबर है 07939849339, 07939849339। इसके अलावा अगर आप स्टूडियोज में आकर हमने को अपना मैसेज देना चाहते हैं, तो स्टूडियोज का नंबर है 01261818 01426181 जो है ये हमारा स्टूडियोज का नंबर है। स्टूडियोज में आए अगर आप हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं। व्हाट्सएप पर आप मैसेजेस जो हैं आप हमें दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी देख भी रहे होंगे और आप हमें सुन भी रहे हैं। फेसबुक पर आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं। सामिन, आप सबको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं सुहाना सफर प्रोग्राम में।
0: असल नंबर जब ज्यादा हो जाते हैं तो मेमोरीज जो है ना वो फिर काम करना छोड़ देती।
1: नहीं, मेमोरीज काम करना नहीं, वो असल में ऐसा है कि थोड़ा सा गैप आ गया दरमियान में प्रोग्राम का, तो वो जो टेलीफोन का जो नंबर्स हैं आजकल, हाँ, वैसे भी वो कहाँ इतने आपको याद नहीं रहते। अपना आप फोन से आप यूज टू होते हैं, वहीं पर नंबर डायल किया और बातचीत कर ली, तो सब सेव होते हैं नंबर। बहरहाल सामिन, 01426181 ये है हमारा स्टूडियोज का नंबर। ज़रूर आप तशरीफ़ लाइए अगर आप हम तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आप आएँ, आप आएंगे तो कुछ बात बनेगी, और तुम आ गए तो कुछ चांदनी सी बातें हों, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। वाकई ये तो बात है, आपके आने से ही इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ती है। आप हैं तो सामिन ये प्रोग्राम है, तो हमारा साथ आप निभाते रहिएगा। खूबसूरत नगमे से हमने प्रोग्राम का आगाज किया, अब एक और प्यारा सा नगमा आप सबकी नजर करते हैं।

0: इसमें कोई शक नहीं है कि मावा ठंडियाँ छावा, जिनकी मावा जिंदा हैं उनकी आप खिदमत कीजिए, और जिनकी माएँ इस दुनिया से राहत फरमा गई हैं उनके लिए हमेशा के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में एक आला मकाम नसीब फरमाए।
1: आमीन सुम आमीन। जी समय मैसेजेस भेजते रहिए 07939849339। व्हाट्सएप का नंबर है, अगर आप स्टूडियोज में आकर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो 01426181 स्टूडियोज का नंबर है। और हमारे पास जो है ये मैसेज आया है, ये आपने लिखा है कि मोहम्मद यासीन, आपके मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मैंने कब मैसेज किया जी आपको?
1: जी ये देखें ना बाप, ये भी वैसे खुश फहमी है आपको। हाँ, हम जो है ना वो अपने दूसरे यासीन भाई की बात कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, ये जो TOA के चेयरमैन रहे हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल, बड़ा बड़ा हमारा और इनका जो है आपको जैसे पता है कि
0: बड़ा
1: बिल्कुल बहुत पुराना साथ है जी। तो यासीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लिखते हैं अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं कि माई डियर ब्रदर यासीन एंड सिस्टर इफ़त, वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर यासीन लिखते हैं कि आई एम लिसनिंग एंड एंजॉयिंग योर शो, जज़ाकल्ला, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आप वैसे ऑलवेज आप जो है हमें प्रमोट करते हैं, हमारे प्रोग्राम को शौक से सुनते हैं यासीन, और आप हमेशा पसंद भी करते हैं, ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि हमेशा आपने हमें उसके बारे में जो है ना मैसेजेस भी आप हमें ऑलवेज आप करते हैं, बहुत शुक्रिया।
0: मिलते हैं तो इतनी मोहब्बत से मिलते
1: हैं।
0: जी हाँ
1: ये तो है जी, बिल्कुल
0: कहना है
1: जी। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे यासीन साहब, अल्लाह ताला जी आपकी सेहत तंदुरुस्ती रखे।
0: आमीन,
1: ढेर दुआएं हैं आपके लिए, और इंशाल्लाह अच्छा सा नगमा आपके लिए प्रोग्राम में जरूर पेश करेंगे। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास एक और मैसेज भी आया था, और वो गालिबन एक नाम मैं नहीं इनका
0: नहीं
1: आया, तो उन्होंने लिखा कि खूबसूरत इनकी ये दिली दुआ उन्होंने लिखी है कि लिखा है कि अल्लाह ताला दिन के तमाम कामों में आसानियां पैदा फरमा। आमीन सुम आमीन। और हमारी मेहनतों में बरकत डाल, और हमारे रिस्क में वुस्सत और पाकीजगी अता कर। आमीन। और हमें हर किस्म के नुकसान आफत और नागहानी जो है ना वो आफात से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, और हमारे तमाम गुनाह को माफ।
0: आमीन।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खूबसूरत प्यारी दुआ का। तो सामिन तशरीफ लाइए, अगर आप भी अपना कोई मैसेज हम तक देना चाहते हैं तो शौक से दीजिए।
0: वैसे एक साहब, क्या नाम था, तारिक महमूद साहब। हाँ, वो कहाँ गए, क्या ये मुल्क छोड़कर तो नहीं चले गए?
1: नहीं, ये हो सकता कहीं हॉलीडेज पे ना गए हों,
0: इसे डब्बे हॉलीडेज।
1: लेकिन वाकई सोचने वाली, हाँ जी उनको तो बाकायदगी से तारिक साहब जो ना हमारे जो है ना ये कंट्रीब्यूट करते थे, मैसेजेस भेजते थे। तो अल्लाह ताला आपकी सेहत तंदुरुस्ती रखे तारिक साहब, आप मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी हैं जैसे भी हैं अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशबाश रखे और सेहत तंदुरुस्ती अता करे आपको। और ज़रूर अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो कांटेक्ट कीजिए और बताइए कि आप कहाँ हैं, आप हम वाकई आपको मिस करते हैं, क्योंकि आपने बहुत बाकायदगी से हमारा जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ आपने हमारा साथ दिया है।
0: आपने कहा है कि कहीं बाहर होंगे, असल में ये प्रोग्राम जो हमारा है ना फेसबुक के जरिए या इंटरनेट के जरिए दुनिया के हर कोने में जा रहा है।
1: ये तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल यासीन।
0: तो मैं एक बार हांगकांग में था
1: नहीं। जी।
0: चंद बरस कबल हांगकांग में था, तो रात के वक्त 7-8 घंटे का जब सुबह हुई तो मैंने ऑन किया, चेक करते हैं फेसबुक, तो शमरेज साहब का प्रोग्राम चल रहा था। मैंने सलाम दुआ की उनसे, फिर लाइव इंडिया, मैंने कहा यहाँ पर तो हम सुबह जाग रहे हैं और आप सोने का इरादा कर रहे हैं।
1: तो सामिन अगर आप भी कहीं से भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ज़रूर बताइए आप प्रोग्राम के हवाले से कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। और अगर आप सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें बताइए 07939849339 पर आप हमें अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। सामिन अब मैं कहूँगी कि हमें हम तुम्हें फूलों की वफाओं में नज़र आएंगे, हम तुम्हें फूलों की वफाओं में नजर आएंगे, जब भी ढूंढोगे फिजाओं में नजर आएंगे, याद आए कभी तो, याद आए कभी तो हाथ उठा लेना तुम, हम तुम्हारी ही दुआओं में नजर आएंगे,
0: नजर आएंगे।
1: आपके नजर किया था ये दो अशआर सामईन, उम्मीद है कि आपने पसंद किए होंगे। अब एक और प्यारा सा नगमा यासीन हमारे तमाम,
0: अब ये हम सुनाने जा रहे हैं जतेंद्र की फिल्म, जो गालिबन पहली फिल्म में से थी जिसमें जतेंद्र को काफ़ी रिकनाइज किया गया था, फर्स्ट फिल्म, इसे नगमा है मुकेश। अल्लाह हम तो तेरे आशिक हैं,
1: सदियों पुराने जी यासिन साहब, आप ही के नाम ये नगमा।

0: ना तुमसे नजर मिली, ना तुमसे नजर मिली, ना तुम्हारा दीदार हुआ, ना तुमसे नजर मिली, ना तुम्हारा दीदार हुआ, बस दिल से दिल मिला और इश्क बेशुमार हुआ। इफ़त जी, मिर्ज़ा गालिब बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं
1: जी जी,
0: उन्होंने इश्क के बारे में कुछ लिखा है, अगर इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। किसी को इश्क की अच्छाई ने मार डाला, किसी को इश्क की अच्छाई ने मार डाला,
2: वाह,
0: किसी को इश्क की गहराई ने मार डाला, करके इश्क कोई न बच सका गालिब, जो बच गया उसे तन्हाई ने मार डाला,
1: वाह,
0: जो बच गया उसे तन्हाई ने मार डाला।
1: कहते हैं कि इश्क की और मोहब्बत की बात हुई
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: कहते हैं कि मोहब्बत तो फिर मोहब्बत होती है,
0: जाहिर है,
1: मोहब्बत तो फिर मोहब्बत
0: होती है।
1: किसी की पूरी तो किसी की आधी
0: आधी या अधूरी होती है। हाँ जी जी जी
1: जी, समझ ना, अब बात हो रही है मोहब्बत की
0: जी।
1: तो बात करते हैं कि मियां बीवी के हवाले से कि उन दोनों में कितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम आहंगी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो
0: है।
1: इसके बारे में ये एक लतीफा ही है,
0: अच्छा।
1: कि जज ने मियां बीवी की नाचाकी, आपस में लड़ाई झगड़ा था, तो उस सिलसिले में फैसला सुनाने से पहले शौहर से दरियाफ्त किया, पूछा कि गुज़श्ता 15 सालों में आपको कभी ये महसूस हुआ कि आप दोनों में कोई हम आहंगी है, ठीक है, आपकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है? तो शौहर ने जवाब दिया, जी बिल्कुल एक बार महसूस हुआ, ये पूरे 15 सालों में सिर्फ एक बार महसूस हुआ। तो जज ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, अच्छा तो बताइए वो कौन सा मौका था?
0: जी जी।
1: तो शौहर ने जवाब दिया, जब हमारे घर में आग लग गई थी तो हम मियां बीवी एक ही खिड़की से बाहर कूद गए थे। तो ये एक वाक्य जो रिकॉर्ड था, हम मांगी हुई है जी, बिल्कुल सही है जी। अब ये अब मुझे नहीं पता कि आपको ये कहाँ तक ये समझ में आती है बात, कि डॉक्टर साहब के पास जो है जाहिर पेशेंट ही जाते हैं, तो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे साफ साफ बता दीजिए कि मेरा जिंदा रहने की उम्मीद कब तक।
0: हाँ, जी,
1: तो मरीज ने ये डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने आगे से कहा, खैर अब इतना घबराने की भी कोई बात नहीं, आपको मैं सही वक्त तो नहीं बता सकता कि आपके पास कितना वक्त है, बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर मैं इस मर्ज में मुब्तला होता तो किसी डाइजेस्ट की कोई नई किस्त पढ़ना हरगिज शुरू ना करता।
0: कहते लंबी जो किस्त है वो ना शुरू करता।
1: जी बिल्कुल ठीक है, यस, बड़ा अच्छा वैसे तरीके से डॉक्टर साहब ने जवाब दिया अपना। जी जी
0: बिल्कुल।
1: तो समय प्रोग्राम सुनते रहेगा, साथ निभाते रहेगा, और इसके बाद जो है मैं भाइयों के नाम जो है ना, मैं थोड़ा सा जो है ना ये अर्ज करना चाहूँगी कि भाई जो है ये क्या होता है, ठीक है। आप सब भी मेरे भाई जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, मेरा अपना भाई भी जो बड़ी शौक से हमारा प्रोग्राम सुनता है वो पाकिस्तान में, तो सब भाइयों के नाम मैं कुछ करना चाहूँगी। तो आप पहले ये नगमा सुनिए।
0: जी हाँ, मेहदी हसन साहब हैं, नाम आए ना तेरा प्यार की रुसवाई में, काश मर जाऊँ इसी गोशाए तन्हाई में।

0: इतनी मोहब्बत कौन करेगा। मेहदी हसन साहब की खूबसूरत आवाज़ थी और शायरी भी कमाल की थी। नाम आए ना तेरा प्यार,
1: प्यार की रुसवाई में, बहुत खूबसूरत। सामाइन, कहते हैं कि फासले बिला वजह नहीं होते, फासले बिला वजह नहीं होते, रवैयों की दीवार होती है दरमियान। बड़ी ऐसे पते की बात है इसमें,
0: एक दूसरे के साथ रवैया जो इंसान
1: रखते हैं। कभी कभी सुकून के लिए दवा की नहीं, कभी कभी सुकून के लिए दवा की नहीं, किसी की गुफ्तगू की जरूरत होती है। समझ, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से आप सब मेरे प्यारे भाई हैं जो मेरे प्रोग्राम सुन रहे हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और सलामत और कामयाब रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सामईन, कहते हैं कि भाई सिर्फ एक रिश्ता नहीं, भाई सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि जिंदगी भर का साथ है
0: जी।
1: वो जो हर खुशी में सबसे पहले याद आता है, वो जो हर खुशी में सबसे पहले याद आता है और हर मुश्किल में सबसे पहले साथ खड़ा होता है। अल्लाह का दिया हुआ वो कीमती तोहफा है, अल्लाह का दिया हुआ वो कीमती तोहफा है और जो नसीब वालों को मिलता है। वाकई अल्लाह का दिया हुआ वो कीमती तोहफा है जो नसीब वालों को मिलता है। मेरा भाई मेरी ताकत, मेरा भाई मेरी ताकत, मेरी ढाल और मेरी पहचान है, अल्लाह उसे हमेशा खुश और सलामत रखे। आप तमाम भाइयों के नाम, अल्लाह आप सबको खुश और सलामत रखे। और खासतौर पर मेरा भाई जो इस वक्त मेरा वो भी प्रोग्राम सुन रहा है, इमरान जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। बहुत खुशकिस्मती है कि आप जैसा भाई जिन बहनों का होता है। तो सामईन, अल्लाह सबके भाइयों को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन जी। साथ आप हमारा निभाते रहिएगा।
0: सामईन का सर जो है ना वो ऊंचा रहता है जब भाई उनके सर पर होता है।
1: बिल्कुल ऐसा ही है जी।
0: सुनाए
1: जी जी,
0: मोहम्मद रफी साहब, क्या हाल है आपका?
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: शमीपुर की एक फिल्म थी जी।

0: खूबसूरत नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में सौतन फिल्म से आपने ये नगमा सुना। खान साहब, उम्मीद है कि इस नगमे को आपने पसंद किया होगा। दिल के सहरा में कोई फूल खिलाया न गया, दर्द ऐसा था। कि हंस कर भी छुपाया ना गया।
1: वाह वाह वाह, क्या कहना।
0: अजब दस्तूर दुनिया का यहाँ मंतक निराली है। अजब दस्तूर दुनिया का यहाँ मंतक निराली है। रसाई जिनकी मुश्किल हो उन्हीं से प्यार करते हैं।
1: हाँ, बोफ बोफ, क्या खूब कहा आपने। का गुरूर तो होना था उनको हमारी मोहब्बत की शिद्दत देखकर। गुरूर तो होना था उनको हमारी मोहब्बत की शिद्दत देखकर, मगर वो अपनी कदर की सोच में हमारी कीमत भूल गया।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। सामिन साथ हमारा निभाते रहिएगा। लिंक एफएम शेफील्ड से आप सुन रहे हैं सुहाना सफ़र, मोहम्मद यासीन और इफ़त हमीद के साथ। रात 9 बजे तक हमारा और आपका ये खूबसूरत सफ़र जारी रहेगा। सामिन, हम अपना ज़हनी सुकून
1: जी
0: आजकल जी हाँ दो जगहों पर खो देते हैं।
1: हो,
0: दो जगह हैं जहां हम अपना ज़हनी सुकून आम तौर पर खोते हैं। जरा गौर कीजिए, जो गुजर गया उसे सोच सोच कर, और जो अभी आया ही नहीं उसकी फिक्र करके। यह है वैसे इसमें बिल्कुल हकीकत है। तो सामिन, माजी को जाने दें और मुस्तकबिल को आने दें और आज को जीना ना भूलें। ये मैसेज है आपके लिए। और कहते हैं कि कीमत पानी की नहीं, कीमत प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं, सांस की होती है।
1: सांस लेने की।
0: रिश्ते बहुत होते हैं दुनिया में, रिश्ते बहुत होते हैं दुनिया में। कीमत रिश्तों की नहीं, निभाने वाले एहसास की होती है।
1: निभाने वाले एहसास की। वाकई जी, बहुत खूब कहा है आपने। ये चंद बातें आपने कही हैं, बल्कि सब कमोश हैं और दिल की गहराइयों को
0: शुक्रिया जी
1: छू लेती
0: है। शुक्रिया। अब सामिन, आपकी खिदमत में हम किशोर कुमार और गालिबन का साथ दे रही हैं लता मंगेशकर।
1: हो सकती हैं
0: जी, हो भी सकती हैं। चलें सुनते हैं कौन है। तो लीजिए सामिन, ये अगला नगमा भी
1: राजेश खन्ना की फिल्म थी और साथ में कुछ और भी था।
0: अच्छा, ठीक है, सुनते हैं और फिर शायद आपको अंदाजा हो जाएगा कौन था इस फिल्म में। जी,
1: एक बात है जो तुझसे कही नहीं जाए, खुद ही समझ लें जो आपकी समझ में आए।

0: एक बात है जो तुमसे कही नहीं जाए, आशा भोंसले साथ दे रही थी किशोर कुमार साहब का। ना चाहते हुए भी ये इश्क दीवाना बना देता है, ना चाहते हुए भी ये इश्क दीवाना बना देता है। खुदा दिल तो देता है लेकिन धड़कन किसी और को बना देता है।
1: जी बिल्कुल, खूब समय साथ निभाते रहेगा। अब बात करते हैं कुछ इल्म के हवाले से कि इल्म की क्या फजीलत है। एक दफ़ा खलीफा हारून रशीद घोड़े पर सवार कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक आलिम अबुल हसन अली बिन हमजा से उनकी मुलाकात हो गई। एक आलिम से हारून रशीद एहतरामन घोड़े से नीचे उतरे और मुसाफा करने के बाद, यानी कि हाथ मिलाने के बाद, उनसे दरबार में आने की शिकायत की। दरबार में ना आने की शिकायत जी, तो उन्होंने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, मैं मुतालिया में इतना मसरूफ रहता हूँ, मतलब रीडिंग पढ़ने में, कि सर उठाने की मुझे फुर्सत नहीं मिलती। तो खलीफा हारून रशीद ने उनसे कहा कि फिर इतने इलम का क्या फ़ायदा। तो अबुल हसन, उन्होंने जवाब दिया, जो बहुत बड़े आलिम थे, कहा कि एक दो फायदे हों तो गिनवाऊं, लेकिन इसका यही फायदा क्या कम है कि इसकी बदौलत अमीरुल मोमिनीन घोड़े से उतर कर बाअदब मेरे से हाथ मिलाने पर मजबूर हो गए।
0: सामने हो गए, बिल्कुल। इल्म की इतनी अहमियत है,
1: ये अहमियत है इल्म की। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि भी क्या करेंगे आप, तो ये है, इल्म अपनी जगह पर है, अपनी इज्जत खुद करवाता है।
0: जी हाँ बिल्कुल। वैसे फिर भी मैंने देखा है कि जो इल्म वाले लोग होते हैं
1: जी,
0: या पढ़े लिखे ज्यादा लोग होते हैं, वो इतने अमीर नहीं होते
1: जी,
0: है ना, इतने अमीर नहीं होते,
1: क्योंकि वो शायद देखे ना, दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि ठीक है मैं इल्म हासिल करूंगा और मैं ये अचीव करना चाहता हूँ,
0: या कि मैं अपना इल्म दूसरों को भी सिखाऊंगा करूंगा।
1: और कुछ होते हैं कि मैं इल्म हासिल करके आगे मैंने ये कुछ करना है। और फिर आप उस लाइन पर चले जाते हैं, ठीक है। तो दो किस्म के लोग हैं। अब टीचर हैं, वो उन्होंने भी तो इल्म हासिल किया है, लेकिन अपना इल्म जो है वो आगे बच्चों तक पहुँचाते हैं। तो दोनों तरह से ठीक है, हर इंसान जो भी तालीम हासिल करता है उसका अपना एक मकसद होता है।
0: जी हाँ बिल्कुल,
1: लेकिन ये है कि जो भी हो, तालीम जाया कभी भी नहीं जाती।
0: हाँ बिल्कुल, तालीम और हुनर,
1: हुनर जी हाँ, ये आपका जो है ना, ये कभी भी जाया नहीं जाते। तो सामिन साथ आप हमारा निभाते रहिएगा और इंशाल्लाह ताला अच्छी बातें, प्यारी बातें जो है ये आपकी खिदमत में होती रहेंगी।
0: छू कर मेरे मन को,
1: जी हाँ, खूबसूरत नगमा है किशोर कुमार की आवाज में।
0: याराना
1: फिल्म से,
0: खन्ना की फिल्म से,
1: नहीं जी, अमिताभ
0: बच्चन और गालबन
1: नीतू सिंह थी उनके साथ, और साथ में मुझे नहीं,
0: अमजद खान के थे।
1: तो खूबसूरत नगमा है और ये नगमा हम खास तौर पर शाहिदा आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। आप भी प्रोग्राम बहुत शौक से सुन रही हैं और हमेशा सुनती हैं, पसंद भी करती हैं, और मुझे उम्मीद है कि किशोर कुमार की आवाज़ में ये नगमा भी आप पसंद करेंगी। साथ सामयिक निभाते रहिएगा।

0: खूबसूरत नगमा किशोर कुमार की आवाज में याराना फिल्म से ये नगमा लिया गया था, और शाहिदा आपके लिए ये नगमा हमने पेश किया। उम्मीद है कि आपने इसको पसंद किया होगा। समय अब जो है आपकी खिदमत में एक और जो है ये कुछ तंजो मिजाक की बात करते हैं हम। मौलवी साहब अपना घोड़ा फरोख्त करना चाहते थे
1: जी।
0: खुदा बख्श उसे खरीदने पर तैयार हो गया
1: जी।
0: तो मौलवी साहब बोले, लेकिन एक बार गौर से सुन लो खुदा बख्श, मैंने इसे जरा अपने अपने ही अंदाज में सुधाया है। मैंने इस घोड़े को अपने अंदाज में सुधाया है। अगर इस पर बैठकर मैं कहूं कि खुदा की पनाह, तो घोड़ा दौड़ने लगता है।
1: खुदा की पनाह,
0: ठीक है। हाँ जी। और अगर मैं कहूं अल्लाह मुआफ करे, तो ये सुनकर घोड़ा रुक जाता है। अब खुदा की पनाह और अल्लाह माफ करे, ये दो वर्ड्स याद रखने हैं। खुदा बख्श को यकीन ना आया, वो आजमाइशी तौर पर घोड़े पर बैठा और बोला खुदा की पनाह, तो घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने लगा। खुदा बख्श ने एक बार फिर कहा खुदा की पनाह, घोड़ा तूफानी रफ्तार से दौड़ने लगा। अचानक खुदा बख्श ने देखा कि वो एक ऐसी चट्टान के किनारे पर पहुंच गए हैं जिसके नीचे शोर मचाता दरिया बह रहा था। इसके औसान खता हो गए खुदा बख्श के, तहम वो बर वक्त चला उठा अल्लाह माफ करे,
1: अल्लाह माफ करे।
0: तो घोड़ा ऐन चट्टान के बिल्कुल किनारे पर पहुंच कर ना ये अल्फाज सुनते ही झटके से
1: इमरजेंसी ब्रेक मारी उसने,
0: रुक गया।
1: और
0: जी खुदा की पनाह,
1: खुदा बख्श दरिया में नहीं,
0: अल्लाह मुआफ करे, अल्लाह मुआफ करे। अच्छा। उसने रुक गया कि उसने अल्लाह मुआफ करे का वर्ड। फिर खुदा बख्श के सीने में बेख्तियार एक तवील सांस खारिज हुई और पेशानी से पसीना पहुंचते हुए बोला खुदा की पनाह। अब इमेजिन करें अब उसके बाद घोड़े ने क्या किया होगा।
1: हाँ वाकई,
0: फिर उसने दौड़ लगा दी होगी और खुदा बख्श जी
1: असर घोड़े के साथ
0: बिल्कुल जी।
1: समय देखकर नगमा सुनाते हैं आपको, उसके बाद जो है ना वो एड्स की वक्त हो जाएगा जी।

0: Want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पार्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा, हलवा, पूरी,
2: समोसा, चाट, नमक पारे, जलेबी, गाजर हलवा, हर किस्म की केक और मिठाई जो सबको पसंद आई।
1: लजीज चिकन पेस्ट्री, लैम्ब पेस्ट्री, सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले और किबाब, सब कुछ ही लाजवाब। पार्ल बेकर्स, 640 Stanyford Road, शेफील्ड, S94LP, टेलीफोन 01142 966092। पार्ल बेकर्स।
3: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
4: You are listening to Link FM.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
4: You are listening to Suhana Safar
7: with Iffat Hamid and Mohammed Yasin.
8: जी, अभी आप जो है ना ये एड्स सुन रहे थे लिंक एफएम शेफील्ड से। सुहाना सफर प्रोग्राम आप मोहम्मद यासीन और इफ़त हमीद के साथ सुन रहे हैं। वेलकम बैक आपको करते हैं, खुश आमदीद करते हैं दोबारा आपको इस प्रोग्राम में। हमारा साथ आप निभाते रहिएगा। और इस वक्त जो है ये हम कुछ अच्छी बातें, प्यारी बातें हम कर रहे हैं। और मैं इससे पहले कि अगला नगमा आपकी खिदमत में पेश करूँ, आपको बता दूँ कि हमारी जो टेलीफोन लाइन्स हैं वो भी इस वक्त खुली हैं। 0114-261-8181 पर आप हमें टेलीफोन कॉल कीजिए अगर आपको मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप टेक्स्ट मैसेज हमें भेजना चाहते हैं तो 0793984939 पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। जी, तो अब ऐसा है कि हम जो है ना किशोर कुमार की आवाज़ जो हम सुनेंगे या
9: शुकर मेरे मंत्र को सुना दिया है मैंने।
8: हाँ जी,
9: तो अच्छा, इससे पहले रफीका आप कुछ कह रही?
8: हाँ जी, मैं कहती
9: चिलमन क्या इस पर्दे को
8: कहते हैं ना, दरमियान में जो पर्दा एक होता है, ठीक है। तो पुराने वक्तों में जो है ना वो हाँ घर में एक पर्दा होता था कि खवातीन एक साइड पर और मर्द हजरात एक साइड पर,
9: ये चिलमन हटा दो।
8: जी, तो

0: ये जो चिलमन है, दुश्मन है हमारी, राजेश खन्ना और लीना चंदावाकर की थी एक फिल्म जिससे हमने आपको नगमा सुनाया है। वफा करना मेरा असूल है, वफा करना मेरा असूल है, मौत आ जाए तो अलग बात है, दोस्तों को याद ना करना मेरी फितरत नहीं, दोस्त ही अजनबी हो जाए तो अलग बात है।
1: बात है बहुत खूब जी। अब हम कुछ और तंज़ो मिज़ाक की बात करते हैं सामई, कि सोवियत यूनियन के आखिरी सदर, अगर आप उनका नाम सुना, गोर्बाचोफ थे जी, एक बार वो वीकेंड पर अपने आबाई शहर गए, ठीक है, और पीर के रोज उन्हें किसी जरूरी मीटिंग में सुबह 9 बजे पहुंचना था। घर से निकलते निकलते उन्हें देर हो गई
0: जी।
1: उन्होंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी तेज चलाओ, लेकिन ड्राइवर कार तेज ना चला सका, लिहाजा उन्होंने ड्राइवर से कहा कि वो पीछे बैठे और वो खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ गए। मॉस्को में 80 मील की रफ्तार से वो चले जा रहे थे तो दो पुलिस वालों ने उन्हें देखा और उनके पीछे लग गए। अच्छा, स्पीड लिमिट जो है ना, वो स्पीडिंग कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद दो पुलिस वाले उनके बराबर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने कार को नहीं रोका, लेट हो रहे थे। इतने में पुलिस का एक बड़ा ऑफिसर भी वहां आ पहुंचा और पुलिस वालों से सवाल किया, कार में कौन है, तुम लोग इसे क्यों नहीं रोकते? तो एक पुलिस वाला बोला, सर जो भी है बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि गोर्बाचोफ उनका ड्राइवर है।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, उसको कैसे अब रोकें?
1: ये बिल्कुल सही है,
0: क्षमता आ जाएगी।
1: बिल्कुल जी,
0: अगर उसको रोकेंगे
1: जी, सही है। अब है कि आप एक
0: अच्छा
1: नगमा सुने या कुछ थोड़ी सी लंबी बात जो है, अब मैं कुछ सेहत के हवाले से, मैं
0: लंबी ना करें, आप एक
1: नगमा सुनते हैं और उसके बाद हम जो है ना सामने सेहत के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे।
0: ठीक है। साथ ही साथ निभाना रे, हमको भूल ना जाना रे।

0: रूना लैला की थी ये सामीन आवाज़ जो आप सुन रहे हैं सुहाना सफ़र प्रोग्राम में 7 to 9 एवरी संडे को यहाँ से लिंक एफएम से ये प्रोग्राम पेश किया जाता है आपकी खिदमत में, साथ निभाते आप भी रहिएगा
1: जी।
0: अच्छा, हेल्थ कितनी ज़रूरी है हमारे
1: लिए, हमारे
0: अपने बदन जो है ना इसमें
1: यासिन, सेहत है तो सब कुछ है
0: जी जी।
1: कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ,
0: कि
1: सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर सेहत की बात की जाए तो हमारी जो है ये जिस्म में पोशीदा जो है कुदरत के बेशबहा खजाने हैं, अगर आप कभी सोचें तो आपकी अक्ल हैरान रह जाती है। सामईन, ये वाकया हैरान कुन भी है और दिमाग को गिरफ्त में भी लेता है।
0: अच्छा।
1: कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से पूछा, या बारी ताला, इंसान आपकी नेमतों में से कोई एक नेमत अगर मांगे तो क्या मांगे?
0: क्या?
1: अल्लाह ताला ने फरमाया सेहत।
0: सेहत
1: मांगे, अगर सेहत है ना तो सब कुछ है। सामईन, सेहत अल्लाह ताला का हकीकतन बहुत बड़ा तोहफा है, और कुदरत ने जितनी मोहब्बत और मनसूबा बंदी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए की है, इतनी शायद पूरी कायनात बनाने के लिए नहीं की। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि हम जब उन पर गौर करते हैं तो अक्ल हैरान रह जाती है। सामईन, हम में से हर शख्स 4,500 बीमारियां साथ लेकर बैठा है, पैदा होता है।
0: अच्छा।
1: हर शख्स 4,500 बीमारियां लेकर पैदा होता है। बीमारियां हर वक्त सरगर्म अमल रहती हैं, मगर हमारी कुव्वत मुदाफियत, जिसको आप इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है, और हमारे जिस्म के निज़ाम और उनकी हलाकत जो है उनको कंट्रोल करते रहते हैं,
0: उनको धकेलता रहता है।
1: बिल्कुल जी हाँ, ठीक है। मसलन, हमारा मुंह रोजाना ऐसे जरासीम पैदा करता है जो हमारे दिल को कमजोर कर देते हैं, मगर हम जब तेज तेज चलते हैं, जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है,
0: जैसे हमारी सांस फूल जाए,
1: और हम तेज तेज सांस लेते हैं और ये तेज तेज सांसें उन जरासीम को मार देती हैं, और यूं हमारा दिल इन जरासीम से बच जाता है। ठीक है सामईन, उसके अलावा दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन जो है ये 1960 में हुआ था, मगर कुदरत ने उस बाईपास में इस्तेमाल होने वाली खून की नाली लाखों करोड़ों साल पहले पिंडली में,
0: अच्छा,
1: ये हमारी टांग में वो रख दी, ठीक है, और ये जो नाली है ये ना होती तो शायद दिल का बाईपास मुमकिन ना होता, ठीक है। मसलन, गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन भी है, ये भी कहते हैं कि 1950 में शुरू हुई, मगर कुदरत ने करोड़ों साल पहले हमारे दो गुर्दों के दरमियान,
0: किडनी
1: के दरमियान एक ऐसी जगह रख दी जहां उन्हें तीसरा गुर्दा फिट हो जाता है।
0: अच्छा, देखिए ना,
1: देखिए वैसे कितनी वैसे अल्लाह ताला की जो कुदरत है, अगर आप सोचे तो आप हैरान रह जाते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या क्या इंसान के लिए सोचा। इसके अलावा जिगर, हमारा जो लीवर है, ये जिस्म का वाहिद जो है ये ऑर्गन है जो कटने के बाद दोबारा पैदा हो जाता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, लीवर को अगर आप काटें
0: काटे,
1: वो दोबारा जो है वो पैदा हो जाता है, और हमारी अगर उंगली कट जाए, बाजू अलग हो जाए, जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा कट जाए तो दोबारा नहीं निकलता, मगर जिगर वाहिद ऑर्गन है जो कटने के बाद दोबारा उग जाता है। और साइंसदान हैरान थे कि कुदरत ने जिगर में ये अहलियत जो है ये क्यों रखी है। अब पता चला कि इसके बगैर जिंदगी जो है ना मुमकिन नहीं, और इसकी अहमियत यह है कि जब ट्रांसप्लांट होता है, जब किसी को लीवर का हो जाए, कैंसर हो जाए, खुदा ना खास, उतना हिस्सा वो काट देते हैं या कुछ है तो वो दोबारा
0: वो अपनी असल हालत पर चला
1: जाता है। तो देखिए ये भी कुदरत का जो है निज़ाम है। तो सामईन, अल्लाह ताला हमारी सेहत जो अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस नेमत से नवाजा है। हम हर रोज हरकत करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, ये खा लिया, वो खा लिया, और कैसे हम वो सारी चीजें हजम कर लेते हैं।
0: जी हां, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह,
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: को बेहद एहसान है। अब मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर आ रही हैं। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई,
1: वाह वाह
0: खता बख्श दो अगर खता हो गई। विश्वजीत और मारा सिन्हा।

0: माफी चाहती हूँ शाहिदा, आपका अभी मैंने मैसेज आपका पढ़ा है और आपके मैसेज भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपने प्रोग्राम हमारा पसंद किया, इसका बहुत शुक्रिया। पूरा मैसेज मैं आइंदा हफ्ते आपकी खिदमत में आपके लिए पेश करूँगी। बहुत शुक्रिया शाहिदा, अल्लाह हाफिज़।
1: My name is Sai Mudassir.
2: This is Rahan.
3: My name is Rizwan Ishwak.
4: My name is Asham.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
7: You are listening to Link FM 96.7.
8: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
9: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है। iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
10: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
11: And the winner is
12: your business being heard on the radio.
13: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
14: Sheffield's very own community radio station.
15: Link FM.
16: My name is Shireen.
17: My name is Abdul Rahman.
1: My name is Sai Mudassir.
2: This is Rahan.
5: My name is Rizwan Ishwak.
4: My name is Asham.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
14: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
15: Link FM.
14: Sheffield's Link FM.
18: Cook Studio. Season 15.

0: की मंजिल।
1: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ।
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7।

0: on 96.7 and around the world online. This is Link FM.
1: जहां हर लफ्ज दिल से निकले
2: और हर सूर दिल को छो जाए,
3: वही है लिंक एफएम।
1: दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम शेफील्ड।

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ। लिंक एफएम शेफील्ड।

0: Listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके

या पीर बाबा, अब तुम्हारा ही आसरा है। मेरी पोती को अच्छा कर दो, कईयों की मुरादें पूरी की हैं तुमने, हमारी भी झोली भर दो पीर बाबा।

0: On fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
1: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है। iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
2: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
3: And the winner is
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
6: Sheffield's very own community radio station.
7: Link FM.
8: My name is Shireen.
9: My name is Abdul Rahman.
10: My name is Sai Mudassir.
11: This is Rahan.
12: My name is Rizwan Ishwak.
13: My name is Asham.
14: My name is Azan Mudassir.
15: This is Ariba and you are listening to Link FM.
6: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
7: Link FM.

0: गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
1: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
2: खुश इखलाक अमला लाजवाब सर्विस AAMOT। अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की MOT नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की MOT एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर किस्म की गाड़ियों की MOT का काबिले एतमाद सेंटर, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री। AAMOT क्ले स्ट्रीट अटकलीफ शेफील्ड S9 to VE। गुलाम कादर साहब से अभी राब्ता करें। कॉन्टेक्ट नंबर 07867862585।
3: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
5: 96.7 Link FM.
6: You are listening to Link FM.